एपिसोड 56। नमस्कार दोस्तों, 90.8 एफएम रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, सच सच बताइएगा, जब हम मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं तो हमारे हाथ दुआ के लिए उठते हैं या किसी लिस्ट के लिए? हम अक्सर भगवान के पास एक अर्जी लेकर जाते हैं, हे प्रभु मेरा यह काम कर दो तो मैं यह चढ़ावा चढ़ाऊंगा। हमने भक्ति को भी एक तरह का बिजनेस बना दिया है जहां हम मुनाफे की तलाश में रहते हैं। लेकिन कबीर साहब आज बड़े कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि भाई यह दुकानदारी बंद करो, परमात्मा कोई दुकानदार नहीं है जिससे तुम सौदा कर सको। आज का दोहा हमें सकाम और निष्काम भक्ति के बीच का वो फर्क समझाएगा जिसे समझे बिना हमारी सारी पूजा पाठ बस एक रस्म बनकर रह जाती है। आइए

करते हैं उस निहकामी देव से मिलने की शर्त क्या है? जब लग भगति सकामता तब लग निर्फल सेव। जब लग भगति सकामता तब लग निर्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निहकामी निज देव। जब लग भगति सकामता तब लग निर्फल सेव।

0: दोहा सौदेबाजी और भक्ति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। हम अक्सर भगवान के पास मांगने जाते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि जहां मांग है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, जब लग भक्ति सकामता तब लग निर्फल सेव। सकामता का अर्थ है किसी कामना या इच्छा के साथ की गई भक्ति। कबीर कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में कोई लालच है, कोई इच्छा छिपी है, तब तक तुम्हारी सारी सेवा, सारी पूजा निर्फल है। उसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम्हारा ध्यान परमात्मा पर नहीं, अपनी उस इच्छा पर है। अगली पंक्ति में वे एक बड़ा तार्किक सवाल पूछते हैं। कहे कबीर वे क्यों मिले निहकामी निज देव। वह परमात्मा जो खुद निहकामी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो पूरी तरह पूर्ण और निष्काम है, वह एक लालची और सकाम भक्त से कैसे मिल सकता है? दो विपरीत स्वभाव वाले एक कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि अगर आप किसी दोस्त से सिर्फ इसलिए हाथ मिलाते हैं क्योंकि आपको उससे कोई काम निकलवाना है, तो वह दोस्ती नहीं, जरूरत है। और परमात्मा को आपकी जरूरतों से नहीं, आपके समर्पण से मतलब है। जब तक आप मांग रहे हैं, आप भिखारी हैं। जिस दिन आप बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे, उस दिन आप भक्त बन जाएंगे। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी प्रार्थनाओं को टटोलिए। क्या उनमें थैंक यू, शुक्रिया ज्यादा है या कृपया ज्यादा? हम अक्सर भगवान को अपनी समस्याओं का हल करने वाला एक मैनेजर समझ लेते हैं। आज कोशिश कीजिए बिना कुछ मांगे बैठने की, बस उसके होने का आनंद लीजिए। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बिना किसी मतलब के बैठता है, उसे सिर्फ माँ चाहिए, खिलौने नहीं। वैसे ही निष्कामता आपके भीतर लाइए। याद रखिए, आप जब आप अपनी इच्छाओं की छोटी छोटी पोटलियाँ छोड़ देते हैं, तभी वह निज देव अपना विराट रूप आपको दिखाता है। भक्ति व्यापार नहीं, भाव है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: श्रोते हो, रेडियो मन भावन च्या कार्यक्रमांबद्दल आपले अभिप्राय देण्यासाठी आम्हाला फोन करा 9284499433 या क्रमांकावर, किंवा व्हॉट्सअप करा 9922337361 या क्रमांकावर।

0: वाला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

एपिसोड 56। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, सच सच बताइएगा, जब हम मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं तो हमारे हाथ दुआ के लिए

हैं, लेकिन कबीर साहब आज बड़े कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि भाई यह दुकानदारी बंद करो। परमात्मा कोई दुकानदार नहीं है जिससे तुम सौदा कर सको। आज का दोहा हमें सकाम और निष्काम भक्ति के बीच का वो फर्क समझाएगा जिसे समझे बिना हमारी सारी पूजा पाठ बस एक रस्म बनकर रह जाती है। आइए जानते हैं उस निहकामी देव से मिलने की शर्त क्या है। जब लग भगति सकामता तब लग निर्फल सेव। जब लग भगति सकामता तब लग निर्फल सेव। कहे कबीर वे क्यों मिले निहकामी निज देव। जब

0: यह दोहा सौदेबाजी और भक्ति के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है। हम अक्सर भगवान के पास मांगने जाते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं कि जहां मांग है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। श्रोताओं, जब लग भक्ति सकामता, तब लग निर्फल सेव। सकामता का अर्थ है किसी कामना या इच्छा के साथ की गई भक्ति। कबीर कहते हैं कि जब तक तुम्हारे मन में कोई लालच है, कोई इच्छा छिपी है, तब तक तुम्हारी सारी सेवा, सारी पूजा निर्फल है। उसका कोई वास्तविक परिणाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि तुम्हारा ध्यान परमात्मा पर नहीं, अपनी उस इच्छा पर है। अगली पंक्ति में वे एक बड़ा तार्किक सवाल पूछते हैं। कहे कबीर वे क्यों मिले निहकामी निज देव। वह परमात्मा जो खुद निहकामी है, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जो पूरी तरह पूर्ण और निष्काम है, वह एक लालची और सकाम भक्त से कैसे मिल सकता है? दो विपरीत स्वभाव वाले एक कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, इसे ऐसे समझिए कि अगर आप किसी दोस्त से सिर्फ इसलिए हाथ मिलाते हैं क्योंकि आपको उससे कोई काम निकलवाना है, तो वह दोस्ती नहीं, जरूरत है। और परमात्मा को आपकी जरूरतों से नहीं, आपके समर्पण से मतलब है। जब तक आप मांग रहे हैं, आप भिखारी हैं। जिस दिन आप बिना किसी शर्त के प्रेम करेंगे, उस दिन आप भक्त बन जाएंगे। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपनी प्रार्थनाओं को टटोलिए। क्या उनमें थैंक यू, शुक्रिया ज्यादा है या कृपया ज्यादा? हम अक्सर भगवान को अपनी समस्याओं का हल करने वाला एक मैनेजर समझ लेते हैं। आज कोशिश कीजिए बिना कुछ मांगे बैठने की, बस उसके होने का आनंद लीजिए। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में बिना किसी मतलब के बैठता है, उसे सिर्फ माँ चाहिए, खिलौने नहीं। वैसे ही निष्कामता आपके भीतर लाइए। याद रखिए, आप जब आप अपनी इच्छाओं की छोटी छोटी पोटलियाँ छोड़ देते हैं, तभी वह निज देव अपना विराट रूप आपको दिखाता है। भक्ति व्यापार नहीं, भाव है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आहे आरजे विभूति आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टच।

0: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: जाने वो कैसे

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ सम

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे समझे।

एपिसोड 56। नमस्कार दोस्तों, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर मैं हूं आपका दोस्त मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, सच सच बताइएगा, जब हम मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे जाते हैं तो हमारे हाथ दुआ के लिए उठते हैं।

0: ट्यून केले रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभांगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: जाने वो कैसे

0: देगी एक भंवरे की निगाहों से चमक जाती है बिजली खुद ही इन गहरी घटाओं से। बरस पड़ती है शबनम आप ही ठंडी फिजाओं से। जा जा
1: अरे जा

0: सच है क्या, सब सच है।
1: पैट्रिक,
2: तुम्ही ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभांगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

ट्यून केलंय रेडिओ मन भवन 90.8 FM आरजे शुभंगी सोबत ऑलवेज हार्ट टचिंग ट्यून इन एनीवेअर रेडिओ मन भवन 90.8 FM

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हा हा छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हा हा हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: ट्यून इन एनीवेयर रेडियो मन भवन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: Tune in anywhere. Radio Man Bhavan 90.8 FM. Always heart-touching.
1: अभी सर उठाने का मजा मिल जाएगा, आने दे पुलिस वाले को।
2: पुलिस चौकी यही नजदीक है, कहो तो
3: मैं बुला दूं।

सलामी देते हैं हसीनों को सलामी, यारों का चलन है गुलामी। देते हैं हसीनों को सलामी, गुस्सा न कीजिए जाने भी दीजिए, बंदगी तो लीजिए साहब।

माशा अल्लाह कहना तो माना, बन गया बिगड़ा जमाना। माशा अल्लाह कहना तो माना,

0: दिया, शुक्रिया तो कीजिए साहब। माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। मुफ्त में बन के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: तुम्ही ट्यून केले रेडिओ मन भवन 90.8 FM, RJ शुभंगी सोबत, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 90.8 FM, always had touchy.
1: ओ निगाहें मस्ताना देख समा है सुहा

आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे है इशारे जब जल जल के कहो क्या करे परवाना। कोई देखे नशीली आंखें मल मल के दिल कैसे बने न दीवाना, क्षमा करे

बचाना मेरे हाथों से, अरमां के गले से लग जाना। जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। दामन न बचाना मेरे हाथों से, अरमां के गले से लग जाना। जले चांद सितारे जिन बातों से, सुन जा वही अफसाना। ओहो निगाहें मस्ताना देख सम

बस्ती के दियों को बुझ जाने दे, लहरा के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने।

के न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो ओ निगाहें मस्ताना, देख समा है सुहाना।

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 90.8 एफएम, ऑलवेज हार्ट टची।
1: पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक्स अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

ये लड़ी है लम्हों की, झालर बना ली है इसकी। कभी पहन लेता हूं, कभी उतार देता हूं, बस यही पेश कर रहा हूं। नाम पता नहीं, रखा भी नहीं। जानता हूं वक्त की गर्द में डूब जाएगा, गुम हो जाएगा। जो याद रहेगा सिर्फ इतना

0: इसे मुसीबत कहते हो छोटे भैया?
1: ये तुझे कहां से मिली?
0: आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मैंने आज तुम्हारी रक्षा की, ये कभी न भूलना।

0: बार गिर गया हाथ से, गिर गया या जानबूझ के गिरा दिया? झूठ क्यों बोलती हो भाभी?
1: मीना, भाभी को झूठा कह रही हो? बेशर्म।
2: मेरे पास गर्मी से दिल बातों के लिए मैं जा रहा हूँ।
0: नहीं भैया, ये तो बहन की प्रार्थना है। बहन हो और भाई राखी न बंधवाए तो बड़ा अपशगुन होता है भैया।
1: होता है तो होने दो।

0: हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: दर्द से अच्छा हाथ मिलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: कर खाते हूँ। अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: क्या चल न सको के समझे।
0: हाँ समझे।

शर्म ना इसमें कीजिए, अगर वो रूठ जाएगी तो क्या वो शोर मचाएगी, अगर वो रूठ जाएगी तो क्या वो शोर मचाएगी।

0: हाय, ऐसे में तेरी आवाज कहीं से आई जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नहगा आसमानों से कोई शोक सितारा टूटे।
1: चोरी के शेर है आप तो कुछ यूं कहते।

0: पूरी होगी उनकी सब फरमाइशें, एक भी हमसे न टाली जाएगी। आ पड़ा है आशिकी से वास्ता, अब तबीयत क्या संभाली जाएगी।
1: प्यार के कैदी जरा संभल जा।

0: चुप क्यों है?
1: ना जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, जबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है।
0: अगर मुझसे प्यार होता तो यूँ न कहते।
1: तो क्या कहता?

0: सोच रहे हैं?
1: मन से मन की डोर बंधी, जब डोर बंधी तो अमर प्रेम मुस्काया। तुम क्या सोच रही
0: थी? मैं सोच रही थी मन में प्रीतम आन बसे, जब आन बसे तो मन मंदिर कहलाया।